0: इतराक नबे मेकअ डीजे अटैक का
1: नॉन स्टॉप रीमिक्स रीमेक एक हैप्पीनर डी